इस शब्द दे विच प्रभु नूं मिलन वास्ते मन लोचदा है और प्रभु नूं जिहड़ा मिलावे उहदे अगे अरदास करदे ने

मेरा प्यार मेरे मन दी पीड़ मेरा गुरु नानक जानता है या फिर ओ जिड़ा गुरु नानक दी नार

प्रभु दे प्यार दी, परमेश्वर दे प्यार दी आपां विचार कर रहे सां। होशियारपुर दे विच रहण वाला देव सिख जी दी बच्ची 11-12 साल दी, जिन्हों पता लगा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फुलां नाल बड़ा प्यार करदे ने, ता प्यार मन विच ऐसा उपजिया, ऐसा प्यार मन विच आया, आप फुल बीजिया, चकोदरी दा फुल पत्तियां निकल आईयां। ता इस बच्ची ने कपड़े दे एक गुत्थी बना के फुल दे उत्ते पा दीती, कोई पंछी इस फुल नूं खराब ना करे, क्योंकि ए फुल आनंदपुर साहब लैके जाने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चरणां नूं मत्था टेक के ए फुल भेट करना। इस बच्ची दे मन दी ए भावना, फुल जद पूरी तरह खिल गया आनंदपुर साहब जाण नूं भी 2-3 दिन बाकी रह गए ने, अज ये बच्ची अपने पिता दे नालों अपनी माता दे नालों पहला ही बाग विच आ पहुंची। बाग विच आके रोज दी तरह बाग दे जिस खिते विच ए चकोदरे दा फुल लगा, ए बच्ची उत्थे आ पहुंची, फुल दे उत्तों गुत्थी उतारी, फुल वल देखिया, सोहना फुल खिड़ रहा, उधर हाले सूरज चढ़िया सी, सूरज दियां किरणां सुनहरे रंग दियां इस फुल ते पईयां, और ए फुल सोने दी तरह चमक उठिया। एक सवेर दा वेला, एक सूरज दियां पहलियां सुनहरी किरणां फुल ते पईयां, जिथे फुल खिड़िया सोने दी तरह चमक उठिया, उस तरह ए जिहड़ी बच्ची है फुल देख के एदा मन भी खिड़ गया। उम्र बेशक छोटी पर पिता दे कोलों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे गुण सुन के कथा कहानियां सुन के मन विच बड़ा प्यार सी। इस बच्ची ने फुल वल देखिया, मन गुरु दे चरणां विच जा पहुंचिया, हाथ जोड़ के अखां बंद करके फुल दे कोल बैठी और बेनती करती है, ऐ कलगीधर पिता कृपा करनी, ए जिहड़ा फुल

कांबे दा ढिरदा कंब गया, उदा हाथ पिछा आया, पर जसवंत राय वो गुस्से विच कहन लगा, कामिया कोई फुल क्यों नहीं तोड़दा, तेनू क्या फुल तोड़। कामे ने फिर हाथ वधाया फुल तोड़न वास्ते, हुण उस बच्ची ने बाल्टी उथी सुट दिती, ज्यो उथू भजी कहिंदे आ रही है, हाए ना तोड़, हाए ना तोड़ वीरवे। ते कामा उदा हाथ

या उस लड़की का तेनू क्या फुल तोड़ मालक दा हुकम कामे ने ते मनना है उस कामे ने फुल नू फिर हथ पाया बच्ची भी कोल पहुंच गई इधर कामे ने फुल तोड़िया उधर उस बच्ची ने आखरी वरी क्या हाय ना तोड़ कहंदी हुई धरती ते डिगी ते बेहोश हो गई। ए नजारा देख के जसवंत राय हैरान हो गया उस अपने महल नू मुड़ पिया पिछे पिछे औकर हाथ विच फुल फड़े है ओ भी तुरदा जा रहे है पर उस नू इस तरह जापदा है जिवें फुल विचों एको ही आवाज आ रही है हाय ना तो हाय ना तो। जसवंत राय महल विच जाके बैठा कामे ने ओ फुल सामने रखिया हाय ना तोड़ हाय ना तोड़ कहंदा होया नौकरी छड़ के ही उत्थों चला गया कहंदा जा रहा मैं अपराध कीता फुल नहीं तोड़िया एक बच्ची दी मैं जिंद तोड़ी नौकरी छड़ के भज गया। जसवंत राय हैरान हो गया पर उसके कन्ना विच भी इको ही आवाज गूंज रही है हाय ना तो हाय ना तो। उधर जसवंत राय महल विच बैठा परेशान है ता दूसरे पासे देव सिख पता लगा बच्ची बेसुरत है बाग विच ताज देव सिख अपनी बच्ची नू मंजी ते पा के घर लै गए। सिद्धकवान सिख ने बाणी नाल जुड़े हुए बच्ची नू मंजी ते पाए है देव सिख एदी घर वाली कोल बैठे बाणी पै पढ़दे ने। रात पै गई सारा दिन बीत गया पर बच्ची नू होश कोई नहीं। जसवंत राय तन पदार्थ बहुत है गुरु तू बेमुख है अमृत नहीं छकया ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू ठीक भी नहीं समझता इन्हां ने हथियार चुके ये लड़ाइयां लड़दे ने इस करके मैनू गुरु ते भरोसा नहीं ते बेमुख होए है पर अज इस नू चैन नहीं आ रहा। रात पई जसवंत राय जद सुता एक सुपना देखिया ए हिंदुस्तान हिंदुस्तान दे जिन्ने भी लोग ने किसे भी जात दे किसे भी मजहब दे ए सारे लोग एक फुल्लां दी तरह ने कोई किसे रंग दा फुल कोई किसे रंग दा फुल फुल आस रहे ने मैं कर रहे ने खिड़खड़ा रहे ने। जसवंत राय सुपना देख रहे है हर फुल दे सराणे एक तुर्क पठान खड़ा है हर एक फुल दे सराणे एक एक तुर्क पठान खड़ा है। अचानक एक ऐसी हनेरी चली उन्हां तुर्का पठाणा ने अपने पैरां थले इन्हां फुल्लां नूं लताड़ना शुरू कर दिता और हरेक फुल विचों इक्को ही आवाज आ रही हाय ना तोड़ हाय ना तोड़। फुल लहूलुहान हो रहे ने ए तुर्क पठान फुल्लां नूं मसल दे जा रहे ने। अचानक पूरे वल्लों एक लिशकारा वजा एक गर्जवी आवाज आई खबरदार ठहर जाओ हुण कोई फुल्लां नूं हाथ ना पाणा। ए लिशक ने जो खबरदारी की थी वो फुल्लां नूं लताड़न वाले ठठंबर गए कुछ मारे गए कुछ भज गए कुछ आप फुल्लां दी तरह निमाणे हो गए संभल गए सुधर गए। फिर आवाज आई रख लिया रख लिया। ए नजारा देख के ज
जसवंत राय दी अख खुल के सारा शरीर परसीने नाल भरे है। घरवाली नू उठाया जसवंत राय कहन लगा भलीए लोके मैं बड़ा बेचैन हां। इस तरह जापदा है जिवें महल दी एक एक इट विचों आवाज आ रही है हाय ना तोड़ हाय ना तोड़। मेरे कन्ना विच एहो ही आवाज गूंज रही है हाय ना तोड़ हाय ना तोड़। पुरजा दी सुपना घरवाली नू दस्सिया ते घरवाली ने कहा स्वामी जी जो आपां देखदे हां जो सोचदे हां ओहो कई वारी सानू सुपने विच नजर आंदा। तुसी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू इस करके ठीक ने समझदे कि इन्हां हथियार चुके ने ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕ ਮੁਗਲ ਜ਼ੁਲਮ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀਏ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮਨ ਵਿਚ ਪਛਤਾਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ

जसवंत राय अपनी कारवाली दे नाल चकोतरे दा फुल लैके जा देव सिख दे घर पहुंचे अमृत वेला हो चुका सी। उस वेले एना की तकिया एक मंजी ते वो बच्ची लम्मी पई बेसुरत है ते उस सिख एदी घरवाली होर सतसंगी गुरसिख प्यारे बैठे ने और सारे बैठ के श्री सुखमणी साहब का पाठ पै कर दे। बच्ची की हालत जसवंत राय देख के उदा हिरदा पार आया मन पार आया। जसवंत राय अगे होया उदी घरवाली ओ फुल बच्ची दे मुंह कोल कीता कहन लगे बेटा सानू की पता सी इस फुल विच तेरी जान है जे पता हुंदा ते फुल कदी ना तोड़दा। उठ बेटा अखां खोल मैनू माफ कर दे। बच्ची ने अखां खोलियां पर जद अखां खोलियां बाणी दा अभ्यास सी बाणी पढ़दी ने अखां खोलियां। अखां खोल के पिता वल देखिया पिता दे गल विच गलवकड़ी पा के वो बच्ची कहन लगी पिता जी मैं ते एवें दुखी होई मैनू ते हुण समझ आए फुल साडा नहीं ये ते साडे मालक जसवंत राय दा। जसवंत राय कोल बैठा ते बच्ची कह रही है ये फुल मेरा नहीं बाग तुहाडा बीज तुहाडे पैसियां दा खाद तुहाडे पैसियां दी असी ते तुहाडे नौकर आ मैं ते एवें गिला कीता। जद सुनिया ते जसवंत राय रोण लग पिया कहन लगा बेटा उम्र तेरी छोटी पर गल बड़ी वड्डी कही सचमुच गुरसिखां दे हिरदे बड़े विशाल हुंदे बेटा मैं गुरु तू दूर हो गया सा पर तेरे सदका हुण मैं भी गुरु कोल चलांगा। इस सारे जने हुशियारपुर तू चले आनंदपुर साहब पहुंचे गुरु का दरबार लगा सारे मत्था टेकिया सारे बैठ गए ने। ए बच्ची हाथ विच चकोदरे का फुल फड़े है ध्यान गुरु दे चरणा वल कदी गुरु दे चेहरे वल कोल पहुंची सामने फुल रख के जद कलगी तर पिता नूं मत्था टेकिया ता धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बच्ची नूं अपनी गोद च बिठाया सिर ते प्यार दिता कहन लगे बेटा तू ते एवें रोई एवें दुखी होई जिस दिन तू बीज बोया तू बीज कोल नहीं बैठी बेटा तू ता मेरे कोल बैठती रही तू इस फुल नूं पानी नहीं पाया तू ता मैनू पानी पियांदी रही है बेटा तेरा फुल ए ता कदू दा मैनू पहुंच गया। ए सुन के जसवंत राय उठिया चरणा ते डिग पिया बड़ी माया भी भेट कीती जो कुछ भेटा कर सकदा सी कीता ते नाले अपना आप भी भेट कीता। पातशाह कर कृपा दे अपने चरणा विच जगह सतगुरां ने कृपा कीती जसवंत राय ने भी हुण अमृत छकिया घरवाली ने भी अमृत छकिया देव सिंह ने भी अमृत छकिया इन्हां सारिया परिवारां ने अमृत छकिया और गुरु दियां खुशियां लै के फिर वापस हुशियारपुर नूं परते। साध संगत प्रभु दे प्यार गुरु दे प्यार दी दुनिया आम संसारी लोकां दी दुनिया नालों अलग है। दुनिया बनाण वाला एक परमेश्वर है पर भगतां दा रंग ते संसारी लोकां दा रंग वखरा है। आओ करिए अरदास सचे पातशाह एहो जिहा प्यार सानू भी दे इंसान इंसान नाल प्यार करे
तेरे नाल प्यार करे, इंसान जिधर भी देखे ओनू तू नजर आवे, ताकि दुनिया तू वैर विरोध नफरत खत्म होवे, इंसान दा हिरदा प्यार नाल भर जावे।

चार चकारे और छड़ने हैं, और जिस तरह सूरमे जंग विच जोश के नाल अगे वधदे हुए चकारे छड़दे हैं, इस तरह ही सारिया ने हाथ खड़े करके चढ़दी कला विच चकारा छड़ना है, ताकि यह साड़ी गूंज कलगियां वाले दे चरणा तक पहुंचे। पाकिस्तान दे नाल जिस वेले 1972 की लड़ाई लगी तो फौजी जिहड़े सन पिछा हटे, तो उस वक्त एक हिंदू कैप्टन ने भजदे हुए फौजियों नूं गजा पाई, गलगियां वाले का जकारा सुनो और वापस परतो अपनी चौकी ते। और यह हकीकत है, हिंदू कैप्टन हुए फौजी फिर वापस आए इस चौकी ते आके फिर हिंदुस्तान की फौज ने कब्जा किया। आओ, ये कलगियां वाले की बख्शिश की नाम जकारा सा

इस अंधार को मेटने के लिए गुरु नानक अवतार हो गया, जिसने किया सिदक बेड़ा पार हो गया। पाप गिरासी पृथ्वी तौल खड़ा कर हेठ पुकारा, धरती ने रो के पुकार कीती है निरंकार, मैं बड़ी दुखी हाँ।

जीव जंतु कोई नहीं इसने छड़िया, सारे खा गया। हुण आदमियां नूं खाना शुरू कीता, जेड़ा स्थिति भुलिया पटकिया इधरों लंघ जांदा है। वड्डा कड़ाया तेल दा भर के रखिया होया, उहदे विच तल के ते खा जाना।

हुन कृपा करो, मेर करो, दया दृष्टि करो, मैं कोई तुहाडी सेवा करा। ते जंगल विच जाके सोने सोने फल ले आया, धन गुरु नानक पातशाह जी दे अगे लिया रखे। धन गुरु नानक पातशाह जी ने अपने

बाबा जी दे चरना चरिया दो चार दिहाड़े नानक सर ठाठ विखे बाबा जी दे चरना विचे सेवा करदे रहे पति पत्नी ते नाल नाल हर वेले

मेरी तन दौलत संपदा कौन सांभेगा। बाबा जी ने आख्या भी पलिया पलाया पुत्र तेनू दे दिए। इन्हां ने आख्या महाराज जी

खड़का के आख्या भी कौन है बोलदा क्यों नहीं ता इसने आख्या मैनू नहीं जान दे इस जुग दा राजा मैं हां कल जुग ते बाबा जी ने आख्या वही असी ता दुनिया छड़ी घर बार त्यागया

नहीं तो फिर बई तू सोच लै, क्योंकि नाम जपण वालियां दे नेड़े जमदूत भी नहीं आ सकते, तो तू किवें आ जाएगा। ता जदों बाबा जी ने रोह दे विच खूंडा खड़काया, ता ए नट लगा

सुखमनी दा नाम बाणी दा तुरा बनना। सेवका ने आख्या जी सत वचन। बाबा जी ने आख्या जिथे एक दो पाठ जा पंज सत पाठ सुखमनी साहब दे रोज करदे हो ना, हुण लगातार सुखमनी दी

महापुरख तां इसे तरह होंदे ने, चोला बदलन लगिया कोई देर नहीं लगाउंदे। आख्या हाथी नूं तां कच्ची तंद तोड़न वेले भी समा लग सकदा है, पर महापुरख चोला बदलदे आ इक निमक भी नहीं लगाउंदे। महापुरख तां चोला इंज छड़ जाउंदे ने जिवें सप अपनी कुंज छड़ जाउंदा है। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु। बाबा जी जदों चोला छड़ गए, बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज ने सेवा संभाली, तां उस वेले भी कलयुग ने आके अवज्ञा करनी चाही श्री

ताकीद करदे सन बई रब नू विसरिया होया के रब नू चेते रखे। जे आखना बाबा जी विसरिया ता कहना बई हुण समे नू संभाल ले, चेते कर ले, क्योंकि महापुरखा नू कोई स्वार्थ नहीं होंदा, कोई लालच नहीं होंदा, उना नू ता आए दी खुशी नहीं होंदी, गए दा गम नहीं होंदा। ओ ता केवल निरंकार नाल जोड़ दे उना पूर्णिया ते फिर बाबा ईश्वर सिंह जी चले। 13 वरिया दे निके जे समय अंदर बाबा ईश्वर सिंह जी ने 7 लख प्राणिया नू अमृत छकाया, क्योंकि जोत ता बाबा नंद सिंह जी दी महाराज दी ही सी ना। 7 लख प्राणिया नू गुरु वाले बना दिता। जदों आप पटने विच गए ते सरदार बख्शी सिंह ने अरदास कीती, बाबा जी थोड़े दिन होर रुको। ए बड़ा अमीर सी, धन दौलत दी परवाह नहीं सी। ते बाबा जी ने भी मुस्कुरा के आख्या भी जे रुकना है 2-4 दिन रुकांगे, पर भेटा लगेगी। इन्हें मन विच सोचिया 50,000 रुपया दे देवांगा। बाबा जी हिरदे दी पट्टी वाच गए ते कहन लगे भी ये ता थोड़ी है। फिर मन विच कहंदा है 1 लख रुपया दे देंगा। उस वेले 1 लख बहुत होंदा सी। ते बाबा जी ने फिर आख्या भी पेटा थोड़ी है, मां पुरखो जो मंगोगे देवांगा। आख्या बचन है,

चेता कराउंदियां ने कि ए जीव तू निरंकार नू क्यों विसारे है। जिस परमेश्वर ने तेनू एडी अमोलक देही एडा अमोलक समा बख्शिया तू उस निरंकार नू क्यों विसारे। प्यारी साध संगत ऐसे संत ब्रह्म ज्ञानी महापुरख संसार विच नित अवतार होंदे ने ते भुले भटके लोगां नू मुड़ समत ला के वाहिगुरु नाल जोड़दे ने। ऐसे महापुरशां दी गाथा अज आपा सारे

हाँ रूहानू, बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वालियां ने निरंकार नाल जोड़िया, क्योंकि आए तां असी निरंकार दे करों हां, पर संसार विच आके परमात्मा नू भुल जाने। ता ब्रह्म ज्ञानी महापुरख रब दे प्यारे ए सानू याद दिलाउंदे ने, बई तू नाम जपना है। ऐसे महापुरख सन बाबा जी जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब दी सेवा करके श्री गुरु नानक सचे

ने काही रूहानू बाबा जी ने तन गुरु नानक सचे पातशाह दे चरणा नाल लाया। बाबा जी दे दर्शन ही ऐसे सन कि जो कोई भी करदा सी नाम जपन वालियां दे दर्शन ते फिर आपे ही प्यार नाल मुख आखदा सी सतनाम श्री वाहिगुरु। क्योंकि नाम जपन वालियां दे दर्शन वडभागियां नूं हुंदे ने। हजूर बाणी च कहने ने एह निशानी साधकी जिस भेटत तरी। ए महापुरख दी निशानी है जिस नूं मिलदिया ही अकाल पुरख चेते आ जावे। क्योंकि जेड़े नाम जपन वाले हुंदे ने इन्हें रोम रोम विच वाहिगुरु वसिया हुंदा। बाबा जी ने कठोर तप करके गुरु नानक सचे पातशाह नूं रिझाया। सारी सारी रात बाबा जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा खड़े होके चवर करना। जदों एक वेरा संत जसवंत सिंह जी ने बाबा जी नूं आख्या, ए रब दे प्यारे आपा नाम जपण वल तुरे तां हां ते नित अरदास भी कर दे, निरंकार तेरे नाल साड़ी प्रीत है, पर जिवें महापुरखो तन्ने ने ठाकुर नूं भोग लवाया सी कि साड़ी प्रीत भी ऐसी है बई श्री गुरु ग्रंथ साहिब परतख होके साड़ा भोग लाऊं। ते बाबा जी मुस्कुरा पे आखन लगे, जसवंत सिंह जी इस प्रसन्नता नूं हासिल करन दे लई कालना भी अत दी कमाई करनी पेगी, बहुत कालना करनी पेगी। ते बाबा जसवंत सिंह जी कहन लगे, ए रब दे प्यारे हो दुनिया नूं छड्या घर बार त्यागया जंगलां विच आके समाधियां लाईयां ते जेकर गुरु नानक दे दर्शन भी ना होए ता ए जन्म किस लेखे। ता बाबा जी ने आख्या, फिर अज तो ए प्रण कर लो कि जितना चिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब विचों धन गुरु नानक परतख आके भोग नहीं लगाउंदे असी भी उतना चिर प्रसाद नहीं छकना। बाबा जी ने अरदास कीती ते आख्या, जिवें लालो नेक दी कमाई करके लियाया सी ते गुरु नानक ने प्रसाद छकिया सी असी भी अज तो जंगलां विचों लकड़ां कट के उन्हां नूं वेच के उस कमाई विचों प्रसाद तैयार करांगे फिर गुरु नानक जरूर अंगीकार करेगा। साध संगत प्रसाद तैयार कीता रखिया, एक वेरा दो वेरा जदों भोग ना लग्या ता बाबा जी ने आख्या, असी भी उतना चिर नहीं छकना जितना चिर गुरु नानक आप नहीं भोग लाउणगे। बिलक दियां पईयां सन दो रूहां गुरु नानक दे दर्शन लई ते तरला पा पा के कहने ने, कदों आवोगे कदों आके प्रसाद भोग लावोगे। रोज जाना लकड़ां कटनिया बाजार विच वेचनिया ते आके अरदास करनी। अज छे सत दिहाड़े हो गए जदों भोग नहीं लग्या, अरदास करदे करदे बाबा जी दा शरीर निढाल हो गया। क्योंकि छे सत दिहाड़ियां तो शरीर दे अंदर अन्न दा एक दाना भी नहीं सी गया। देखो किड़ी प्रीत सी बाबा जी दी। सार संगत बोलो श्री वाहे, एडी प्रीत पाई श्री गुरु ग्रंथ साहिब नाल ते एक भी अन्न दा दाना अंदर ना गया ते शरीर निढाल होके गिर पिया। जदों गिर गए बाबा जी ता बाबा जसवंत सिंह जी नूं आखन लगे,
ਵੀ ਰਾਗਾ ਸਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ ਕੇ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੇ ਆ ਕੇ

हे ईश्वर साडा सुभाई है भूल जान असी कल जुगी जीव जो होए साडा सुभा है कोई सानू अखां विच पाण लई सुरमे दी सिलाई दे देवे असी उसका तो धन्यवाद कर देंदे हां पर तू सानू सुंदर नेत्र बख्शे हन कंचन वर्गा शरीर बख्शिया है चंगा रहन बहन पहनन ते होर बेअंत कृपा तू कीतियां हन असी तेरा शुकराना नहीं करदे तेरा शुकराना भूल जांदे हां इसलिए ए हमरो सुआओ ए साडा सुभा ही बन चुकया है जे एक जन्म दा होवे सुभा तां बदल लईए कईआं जन्मां तों इही सुभा तुरिया आ रहा है इसलिए तेरी रहमत ही सानू तार सकदी है तेरी बख्शिश ही सानू तार सकदी है ए ईश्वर अगे सारिया ने मिल के अरदास करनी है हमरो सुआओ हमरो सुआओ साडा की सुभा है आद अंत जो राखन हार ध्यान देना

इस भाषा दे विच एक नवेकली गल है, 35 अखर ने, ओड़ा ऐड़ा ईड़ी सस्सा हाहा, हर अखर दी गुरु साहबा ने व्याख्या कीती है। ऐ भाई, जदों तू ऊड़ा कहवें ते तेरा ध्यान परमेश्वर वल चला जावे, तां गुरु नानक साहब ने एक पट्टी उचारी, एक पट्टी गुरु अमरदास जी ने जिहड़ी आप सुन रहे हो। तां गुरु नानक साहब ने की कहे, ऊड़ा है उपमा तांकी की जय, जांग का अंत ना पाया, सेवत रहे चित जिनका लागा, आया तिनका सफल पया। तेन ऊड़े अखर का उपदेश है, ओदी उपमा ओदी सिफत कर जिस परमेश्वर का किसी ने अंत नहीं पाया। कैसे अखर ने ते अखरां दा उपदेश जो किसी भी भाषा विच नहीं मिलता, चजे अखर द्वारा धन गुरु अमरदास उपदेश करते ने। गुरु का उपदेश सुन ताकि तेनू होर किसी पासे झाकना

परमेव मूड़े ममता लागे तुद हर विसरे तू क्रोध दे वस हो गए काम दे वस हो गए ममता दे वस

गुरु अमरदास जदों गुरु नहीं सन बने हर साल हर द्वार गंगा नहाण जाया करते सन। इस वरी भी गंगा नहाण जदों गए एक ब्रह्मचारी महात्मा मिल गया, ऐसा प्यार पिया।

गुरु अमरदास जी ने बैठ के शक लेना। जे गुरु अमरदास जी ने प्रशादा पकाना, उस ब्रह्मचारी ने नाल बह के शक लेना।

हजारा महापुरुष इस पंडाल विच आके बैठ गए। पंडाल दे विचकार एक घोड़ा खड़ा किया गया। राजे जनक ने उन्हां सारिआं नूं कहा, तुहाडे विचों

नाम है अष्टावक्र। कहन लगे राजे जनकनु, मैं तेरा गुरु बनांगा। सारे हंस पे। कहन लगे अपनी शक्ल नहीं देखदा, कुब निकले सीधा तुर नहीं सकदा, बच्चे शक्ल देख लैन ते सारी रात सौण ना। आया राजे जनक दा गुरु बनन। पर अष्टावक्र जी ने उन्हां लोकां दे मखौल वल ध्यान नहीं दिता। राजे जनक नूं कहा, मैनूं बेटा की देवेगा? मेरी बेटा या ते सारा राज या अपनी सारी धन दौलत दे या अपना शरीर दे ते या अपना मन दे। राणी दे नाल सलाह कर ले। राणी ने कहा राजे जनक नूं,

इस वास्ते उपदेश है तुझ सिर लिखिया सो पढ़ पंडित अवरानू ना सिखाल बिखिया पहला पहा पया पा दे पिछो दे गल चाटड़े कहो जो उपदेश लोकां ने क्यों माड़े पासे लाना है पहला जमा दा फहा तेरे गल पवेगा ते पिछू तेरे चाटड़े आंदे।

धन गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन करन आए। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, भाई दयाला अमृत छको सिंह सज जाओ। भाई दयाले ने कहा, सिखी तुसा तुहाडे वड्डिया ने दिती है, अमृत दी की लोड़ है। गुरु साहब ने कहा, असी कुछ मंगदे नहीं दे रहे हैं, खालसा सिखी है, सिखी खालसा है, चीज ओ ही है, रंग नवा है।

गुरु साहबान किया चंगा फिर हूं जदों सिखां दे अगे नका रगड़ोगे फिर तुहानू अमृत मिलेगा। भाई भगतू दी वंश विचों ही भाई जीवना जी होए ने।

अतिसो पजी पजी आई। बीबी देसा नू गलवकड़ी विच लै लिया ते नाले झूमदी हुई कहन लगी, देसा एक खुशखबरी लैके आई हां, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साडे पिंड आ रहे। कोई कुछ भी कवे पर मेरा मन कहिंदा जे साहिब जी आ रहे ने

एकदम चरना से डिग पे चरण फड़ ले, अथरू नहीं रुकते, कोई इज्जत नहीं देंदा, कोई मान नहीं देंदा, पर जदों पिता गुरु मिले मन फिस गया। ऐ मना पिता गुरु घर आया हुण गुरु नूं अपना दुख दसना है, अपना सुख भी तां इहनूं कहना है।

अच्छा बेटा, ये साड़ा खेस संभाल के रख, अस फिर आके ले जांगे, नाले रोटी भी खावांगे। बीबी दे संग किसी आनंद विच गुआच गई, सब फिर घोड़े ते छाल मार के सवार होए। राम सिंह अगे उड़ीक रहा सी, ओदे पिछे जा पहुंचे।

नहीं करोगे तुसा मेरा की सत्कार करना है। और मैं कड्डो मना विचो बिल्कुल इनू मथा, तुसी चार भरा हो अमृत छके है पर आपस च प्यार नहीं, जे तुहाडे विच प्यार नहीं तो तुसी मेरे नाल की प्यार करोगे। ए नफरत कड्डो दुविधा दूर करो, आपस च प्यार रखो ता साडी खुशी प्राप्त होवे। इन्हां घरां विच ये जिहड़ी दुविधा सी

गुरु प्रसादी जिनी राम पुछाता, निर्गुण राम तिने बुझ लिया, तेरांत ना जाई लख्या, अकथ ना जाई हर कथया, नानक जिनको सतगुरु मिलिया।

हजार चूप कहने लगा मैं वेख वेख ही नहीं हरा। आप नदे चुल्लू घर पानी तह निंदे जे गंगा, ऐसे भी इंसान तुम दुनिया चल। आप चंगाई पले नहीं बनते, चंगे काम करने वाले तो दुखा ची नहीं करते। करोड़िया भी शोर काफी सिर पे चुक ली ते वापस मुड़ गए। मरदाने ने दूरों वेखिया मरदाना उठ के खड़ा। हजूर कह लगे मरदाने की गल है, काला पै गए पाशाओ वेखो जिन्हें मैनू ठुडा मारिया से तहू पुराइया के ऐसी आ रहे है। पता नहीं घोड़ा किधर गया, काठी सिर ते चुकी आऊं। अदू कह लगे मरदाने आऊं ने। मरदाने ने कहा महाराज अगे मैं तुहाडा हुक्म मनी ते हुण तुसी मेरी बेनती मनो। मरदाने कहो की कहना है। मरदाने ने कहा महाराज यह है कला ते आपां सुख नाल हां तिन, जे तुसी ते भाई बाला है दिया कदे बाहां फड़ लो ना तो मैं रवाब दिया दो ठोकरां ने सिर च मार के बदला ही ला लू। आखो श्री भाई पर हजूर कह लगे ना मरदाने रवाब मारन वास्ते रवाब दे भी शब्द का तीर बने। मरदाने मार कोई तीर अणी आला आ गए पंछी केरे। मरदाने ने क्या महाराज जे ए गल है तो आप कृपा करो, की पता मेरा तीर खता कर जाए। आप बख्श सत मरदाने से रवाब च मरदाने ने रवाब चुकी। रवाब दियां तारां ते मरदाने दियां कोमल कोमल उंगलां चलियां कोई इलाही नाम चलिए। ते इधरों मेरे धन गुरु नानक पातशाह जी का मिठा गला खुलिया, करोड़िया नेड़े आ चुका सी, साहबा ने मुखातब होके तकिया ते फिर प्यार नाल इस अज्ज सूखी की है।

रो लिया थे। रो रो के मेरे तन गुरु नानक पातशाह ने चरना रुत हो पातशाह बख्श अदूर कहने लगे मरदाने बख्शिए। मरदाने ने कहा महाराज अगे मेनु पुछ के बख्श दो ये तो थोड़ा बिरद है जो शरण आवे तो संत लावे ए बिरद तो हजूर ने अमर दृष्टि तकिया तुकिया करोड़िए फिर जप सतनाम संसार रोगी नाम करोड़िया नाम जपे नाम जपेगा तेरा मन कोई गाड़ी बाणी करे गाड़े सत्संग भी करिया करते करोड़िए तेन निरंकार ने माया दिखती है दान पुण्य को आज माया भी कर सत्य हूं करोड़िया सेठ गल च पला पा के कहना पातशाह एक बेनती मेरी करवा केड़ी पातशाह नाल ही मेरा पिंड हूं मेरे घर चल मैं थोड़ी सेवा थोड़ू प्रसाद छकाव दुध पिलाव अदूर कह लगे क्यों मरदाने चलिए मरदाने ने कहा महाराज भी कोई पूछने वाली गल है चलो हूं तो सिख बन गया कौड़िया अदूर कह लगे मरदाने अजे सिख नहीं बने पातशाह किस तरह हजूर कह लगे मरदाने अजे सिखी दिती सिखी की है हुक्म जे हुक्म मनेगा तो फिर ही साडा सिख बन सिखी गलां भी सी गलां की सिखी कमजोर सिखी का स्वरूप की है उस वाहिगुरु का हुक्म हुक्म मनिए होवे परवान ता खसमे का मह करोड़िए जो तेनू असी उपदेश दिता है ओनू कमा जे तू कमाएगा फिर अरदास करिए असी आवांगे तेरे घर प्रसाद भी छकांगे ते आके वाहिगुरु दे नाम का पवित्र जो अमृत है ओदा प्रवाह भी छकांगे करोड़िए चरण ते बैठ पातशाह मैं गरीब ने भी बख्शिश कर दिती है हजूर कह लगे करोड़िया बख्शिश मेरे वाहिगुरु की जिस वेले बख्शिश का समा आता है फिर जिना संभाल लेता है वह पाज करोड़िए बख्शिश होते तो भी गुरु की बख्शिश हो बख्शिश वाला समा पूजने बख्शिश तो सदी ही है बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन करते सन उस वाहिगुरु की सदा ही मेहर है पर उस मेहर को संभाल लेना यह वही आप जिन्हों के भागा विचे बख्श दो वेले आके आप कीर्त नहीं जुड़े जिन्हों से गुरु जी कई आने ही नहीं कई नावे पाई जाते पर कई ऐसे प्रेमी भी हैं जिन्हों ने किसी कीर्त च नागा नहीं पाया जो कीर्तन च नागा नहीं पाएगा तो गुरु नानक की बख्शी से ही नागा नहीं पाएगा चौड़िया ये मालिक की दात ये जोर भी चीज नहीं न्यूयॉर्क तू टेलीफोन आया है कदों वापस आ रहे हो छेती आ जाओ किसे पासे उड़ीक है तो कई गुरु प्यारे थोड़े वर्गे माई भाई कीर्तन का अमृत से तो ये दात गुरु की अपनी है हजूर कह लगे मरदानिया रवाब चुके शब्द की अकेली तक पर मरदानिया ने रवाब चुकया ते बाबे ने सोने गले ते शब्द का की किया और सारे पढ़िए कीर्तन की समाप्ति करिए।

0: जो गुरु का देश सैदा ने करोड़िए के बख्श और असी भी इस उपदेश को निर्देश बसाइए कमाई करिए जो साडा भी जीवन सफल फिर सानू सदा वास्ते की मिलेगा साडा ये लोग सुखी है और लोग सुखे ने हर पल आपे मिले और कैरी साध संगत जिथे होस्टल दिया संगत ये गुरुद्वारा साहब के प्रबंधकों के उद्यम नाल दास रोज आप जी के दर्शन करते हैं तो आप शब्द द्वारा गुरु नाल जुड़े तो अज गुरु दरबार साहिब है अमरीकन सिंह ये गुरु प्यारा जत्था ये भी इतने ये भी साढ़े वीर अनुभाई गुरु नानक पिता है एक पिता एक उसके हो पारक तू मेरा गुरु जो गुरु नानक का सिख गुरु की मर्यादा विच रहेगा भाई उसे कोई विथ नहीं है सारे बापू के बच्चे हैं तो गुरमुख प्यारे भी आए हैं तो शब्द एक शब्द की हाजरी वो लगवाएंगे उस तो कीर्तन की समाप्ति अमृत वेले का प्रोग्राम भी है कल शाम जिस तरह रोटीन कह दी है उसी तरह कीर्तन धन गुरु नानक पातशाह आप जी भी महान महान बख्शिश द्वारा बरफरदार गुरमुख प्यारे गुरसिख आप जी ने बख्शे खजाने विचों कीर्तन की भेद शब्द का आदर करते डालर अरदास कराते मेरे अंतर जाने गुरु नानक जी आप अपने सिखा बच्चिया सिखी जीवन सदाचार दिया कला बख्शो आओ फतेह गुलाओ प्यार
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु Thank you.

महादेव पिया मानो के नाम जपण वालियां दे देव, नाम जपण वालियां दे वड्डे जिन्हां नूं सारियां ने सत्कारिया, ऐसे भगत नामदेव ने बचपन दे विच नारायण नूं प्रगट करके दुध पिलाया ते शब्द उचारण होया दूध पियो गोविंदे राये, दूध पियो मेरो मन पतिया, नहीं ता कर को बाप रिसा। ते कहंदे ने आखर भगती परवान होई नामदेव जी दी, ते दूध पियाए भगत कर गया, नामे हर का दर्शन भया। नामदेव नू हरी दे दर्शन होए ते भगत नामदेव दे प्यार वाला दूध नारायण ने पी के बख्शा कीतिया। ते इसे तरह भगत नामदेव संतां दा संग करदे, नाम जपदे, परमात्मा नू याद करदे अपनी उम्र बितांदे गए। थोड़े जे वड्डे होए ते उस वक्त दे महान योगी, महान तपीश्वर जिन्हां दा इक पंथ चलदा सी, स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज, स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज दे पंथ दे विच दाखल हो गए ते चल पे उना दे नाल।

स्वामी ज्ञानेश्वर जी ने विश्राम कीता। देखिया नेड़े एक खूह दिखाई दे रहा है, मगर उस दे विच पानी कोई दिखाई नहीं देंदा। खूह ते है मगर पानी कोई नहीं। ते ज्ञानेश्वर जी महाराज ने सोचिया, देखिया भाई ए मेरे नाल जो चले आ रहे

ईश्वर जी ते साथियां ने देखिया मगर नामदेव दिखाई नहीं दिते, क्योंकि नारायण दे चरणा कमलां विच जुड़े ते ज्ञानेश्वर जी ते उना दी मंडली ते अगे नू चाले पा गए, मगर नामदेव दी समाधि खुली ते की देखदा है कि उस चौंक दे नेड़े तेड़े एक पठान खलोता है ते उस पठान ने पगड़ी पाई हुई है ते उस पठान दे कोड़ी ने वछेरा दिता है। कदी वछेरे वल देखदा है नामदेव ते कदी उस दी पगड़ी वल देखदा है ते पठान नू देखदे देखदे मानो पठान दे रूप विच्चों नारायण नू देखदा होया न

सेवक के भरपूर जोग जोग वहा गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभु सदा सलामत।